धरती भरि नौलो रंग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, धरती भरि नौलो रंग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटुभरि नयाँ लाली लाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटुभरि नयाँ लाली लाइसक्यो।